हाँ मैं नमता पने कोंगरा में यही अंदे इंद ताई यो इते इमे तो न बाहम वाते राई ने किया ना कांता ने आरो को ना उतारे पोन ना को ना रनम पने इसुवा ने मैं वा किया तपरो वो आवा इसुवा ने मैं वा ये पंडे इतारी की दे तपराने का कमेउ रिना कोई मुझे को उस माह कन रोना यान ने कोंगरा में यान ने प्याम तका में यान ने प्याम में यान तपस Kaya na yan may ngam kita ang kaya na yon na pa kaya tira na ko kanwan de. Tengay na yun may gan ne. Mayuri FM adipan amsa kokongura amsa ni ne. Awayam amsa kaungay na nun de. Titay tawa na metawa na. Ayaren titay ye. Yatay mito na mawa tira ni kiyo na ang atapewa titay kanta ni ngan rukun na utaripun. Nakon na ra. Aranampan ni suwa ni mewa kaya taporo wawa. Awa suwa ni mewa.